खुला खबर को साथ में गरिमा विकास बैंक लिमिटेड सुरक्षित भरपर्दो बचत तथा आकर्षक ब्याज दर का लागि प्रतिबद्ध हिमाल सुनचाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचाँदी पसल वालिङ बजार स्याङ्जा।

आहा, इस मधुर खालकती इस गीत भाग का संगीत में हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम का अंबस्ती का भाग में आज कृष्ण बशाई मा रहेगा हमें दोपहर समक्ष पुराना इस गीत भाग का हरलाई कार्यक्रम में जुड़ी रहेगा सो संगे नया इस गीत भाग का हरलाई बनी कार्यक्रम में जुड़ने से ये तिबला हमें और को भाग का जोड़ सों सही भाग का संगे हमें छोटो व्यापारिक विश्राम तर्फ लाग्नेछौ विश्राम जीवन हाँ पास्तुत हुने नै छौ यहाँ भने हामी सँगै रहनुहोला

0: सुनत नस बजे
1: ए समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिकै रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ।